औरी नानक तरन जापनी हर ताके पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरियां एक तुरी चरे बस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करना जिनकी या फिर से सी करनी सा।

0: हमलों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: मैं की मंगा तेनु सब खबर है, मेरी हर उलझन दा तू ही सबर है। तेरे हुक्म नु सिर मथे मन लिया, तू ही मेरी मंजिल ते तू ही मेरी डगर है।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्रीराम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

0: महक पंजाबी। नौ बज के दो मिनट ते फिल्म संगीत पेश किया जाएगा। श्रोते अपने द्वारा भेजे हुए खता के जवाब सुनेंगे। प्रोग्राम होएगा तो हाड़ी चिट्ठी मिली, समा रहेगा सवेरे 9:30। आकाशवाणी बठिंडा तो तैयार किया गया विशेष प्रोग्राम तंबाकू सेवन किन्ना घातक, ये तुसीं सुनोगे सवेरे 10:00। साढ़े 10:00 प्रोग्राम होएगा हैलो फरमाइश। 11:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। 12:05 ते परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर तंबाकू नाल होण वालियां समस्यावां इस विषय के उत्ते डॉक्टर अमन सूद नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। सिलसिला रहेगा झांजरां दे बूर। दोपहर 1:15 तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम दे दौरान खबरां आपो अपने समय ते नशर कीतियां जाणगियां। दोपहर 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी सुखजिंदर जीत यमला ते गाए लोक गीत सुनोगे। शाम 4:02 ते प्रोग्राम होएगा खेड संसार। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30। साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30। शाम 6:30 ते हाथी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम दे विच काम दियां गल्लां दे नाल नाल सब्जियां च पानी दा सही प्रबंध इस विषय दे उत्ते डॉक्टर दिलप्रीत तलवार जानकारी देंगे। पंजाबी नाटक सुनाया जाएगा हार मंत्री। इसे दे नाल खेतीबाड़ी नाल संबंधित गल्लां बातां भी कीतियां जाणगियां ते मनोरंजन लई गीत संगीत भी पेश किया जाएगा। शाम 7:40 ते साहित्य सुधा प्रोग्राम तहत तुसी संस्कृत साहित्य अते योग इस विषय दे उत्ते डॉक्टर मधुबाला दी वार्ता सुनोगे। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे दा समा रहेगा शाम 7:50। रात 8:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। सुर सरिता प्रोग्राम तहत अज तुसी सुखविंदर सिंह मोखे ते साथियां दे गाए शब्द सरवण करोगे। समा रहेगा रात 8:15। 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे स्पॉटलाइट। 9:30 युवा भारती अते संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम साढ़े दिल्ली केंद्र तो पेश किया जाएगा रात 10:00। डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा तो बाद दोपहर 3:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अते रात 11:10 ते तुहाडे वट्सएप राही भेजे हुए ते लाइव फोन इन फरमाइशां नूं पूरा करदा प्रोग्राम सौगात पेश किया जाएगा। एसी परचे तहत अज पेश किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा वेरवा असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 6:55 हो जा रहे हैं। हुण तुसी संस्कृत विच समाचार सुनोगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम् अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति।

0: ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषां उद्घाटनानन्तरं सैनिकान जनसमूहं च संबोधयन् आसीत।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
0: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारतयात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-0 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 MHz या 973 KHz से सवेर के 7 बज चुके ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश दियां सरहदां नूं सुरक्षित करना अते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकना देश की जनसंख्याकी की राखी लई महत्वपूर्ण है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों नूं बीजां दी उपलब्धता यकीनी बनाउण लई 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नीट पेपर

काले रंग नू लोक मजाक करदे काले रंग नाल लिखिया कुरान देखो ग्रंथा पोथियां दी रचना च स्याही काली काले रंग विच किन्नी है जान वेखो काला रंग ता तुप्पां सह लैंदा गोरे रंग ते पैंदे निशान देखो गोरे काले रंगा च की रखिया चंगा कम ते चंगा इंसान देखो। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते अदाब हो जाओ तैयार। बिल्कुल जी, मेरे नाल 8 बजे तक दा ए मनोरंजन ते जानकारियां भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर दे सफर नूं तय करन दे लई। इस सफर दे दौरान बहुत सारियां तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां ने। अज दे दिन दे इतिहास बारे भी दसना है। एक छोटी जी कहानी दे नाल असी ते तुसी सारयां ने एक बहुत वड्डी सिक्ख्या लैनी है ते नाल दी नाल खास शख्सियतां दा जिथे जिक्र करना है भी उत्थे एक खास शख्सियत दे नाल तुहानू मिलाउणा भी है जिन्हां तों असी बहुत कुछ सिखांगे बहुत कुछ जानांगे ते इह सब कुछ होएगा प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच ते उस दे लई तुहानू बने रहना पएगा आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल। ते शुरुआत प्रोग्राम दी बहुत ही सोहनी एक गल दे नाल कि दोस्तों काले रंग नू अक्सर लोक मजाक दा विशा बनाउंदे ने पर असल विच रंगा दा नहीं सगों मनुख दी सोच करम ते विचारां दा मुल हुंदा है। परमात्मा अक्सर उस व्यक्ति लई सब तो वड्डी किस्मत लिखदा है जिस नू जिंदगी विच सब तो वड्ड ताने मेहने पैंदे ने। लोग तुहाडी मेहनत नू बेकार कहणगे तुहाडियां असफलतावां ते हसणगे ते तुहानू अगे वधन तो रोकण दी कोशिश भी करणगे पर परमात्मा हर चीज़ ते नज़र रख रिहा है। हर अपमान तुहाडे सबर नू मजबूत करदा है। याद रखो सोना भी अग दे विच तपन तो बाद ही कीमती बनता है। इसे तरह एक व्यक्ति संघर्ष अते दर्द विचों लंघन तो बाद ही महान बनता है। दुनिया सिर्फ चंगियाई ते नहीं चलती ये समझ ते चलती है। जे सिर्फ रोशनी हुंदी तां कोई भी हनेरे की कीमत नूं नहीं जानता। जे सिर्फ खुशी हुंदी तां फिर शांति की भावना ही ना हुंदी दुख का एहसास ही ना हुंदा। ते जे हर व्यक्ति बराबर चंगा हुंदा है तां बुरे व्यक्ति की तां पछाण ही अलोप हो जाने। इसलिए लोगों की गल नूं दिल ते ना लाओ। जेकर तुहाडा इरादा मजबूत है ते परमात्मा विच तुहाडा विश्वास सच्चा है ता एक दिन सफलता तुहाडे पैर जरूर चुमेगी। सो जिंदगी दे विच सफलता ते खुशी प्राप्त करन दे चार ही तरीके हन। हमेशा दिमाग ठंडा रखो, समय की कदर करो, भविख दे लई बचत करो ते हमेशा ही अपने पैर जमीन ते रखो क्योंकि सभी को अपने अपने हिस्सों की खुशियां और गम मिलते हैं। ना नसीब से कुछ ज़्यादा ना कम मिलते हैं। हम तो बस मुसाफिर हैं उस कारवां के यहाँ खामोशियों के मौसम मिलते हैं।

अपने आले दुआले भी रोज़ नवे रिकॉर्ड टुटदे ते बनदे देखदे हाँ। तो ये सब जदों इतिहास के पन्नियां दे विच सुनहरी अक्खरां दे नाल दर्ज हो जाता है तो फिर जो असी इतिहास के विच उन्हां दिनां दे बारे जाके खोज करते हाँ तो सानू फिर उन्हां शख्सियतों बारे पढ़न का जानन का मौका मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास अपने आप दे विच बहुत विशाल है, बहुत कुछ समोई बैठा है। जे इस नूं चुन के लिआउणा साडा तुहाडे सारिआं दे लई सिर्फ मकसद यही हुंदा है कि तुहानूं उस दिन बारे जानकारी दिती जाए, उन्हां शख्सियतां बारे दस्या जाए, उन्हां घटनावां बारे दस्या जाए जिस दे नाल तुहाडे अंदर भी कुछ होर नवा करन दे लई जज्बा पैदा हो सके। तो जदों असी अज दे इतिहास दे बारे इतिहास दे विच झात मारदे आ तो अज 30 मई दा दिन साल 2026 जी दिन है शनिवार, तो अज तो बाद साल दे 150 दिन अज साल दा ये 150वां दिन है तो 215 दिन जिहड़े साल दे बाकी रह जांदे ने। तो जदों इतिहास दे विच घटनावां ते नज़र मारदे हाँ भारत ते विश्व पद्धर ते होईयां घटनावां ते तां असीं देखदे हाँ कि 30 मई 1498 नूं कोलंबस 6 जहाज़ां दे नाल तीजी वार अमरीका की यात्रा ते निकलिया सी। इसे तरह 30 मई 1539 नूं स्पेन दे हरनाडो डी सोटो ने फ्लोरिडा की खोज कीती सी। 30 मई 1826 नूं उदांत मारतंड पहली हिंदी अखबार 1826 दे विच शुरू हुई सी, इसलिए इस दिन हिंदी पत्रकारी दे रूप दे विच भी अज दे दिन नूं मनाया जांदा है। 30 मई 1919 नूं रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाले बाग कतलेआम दे विरोध दे विच उन्हां नूं मिली सर दी उपाधि जिहड़ी आ उह वापस कर दित्ती सी। 1949 दे विच अज दे दिन पूर्वी जर्मन संविधान नूं अपनाया गया सी। इस तरह 2012 दे विच अज दे दिन विश्वनाथन आनंद 5वीं वार विश्व शतरंज संघ दे चैंपियन जड़े आ वह बन गए सी। इस तरह 30 मई 1987 नूं गोवा अधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का 25वां राज बन गया सी। ते जो खास दिनों की गल की जाती है जी, अज का दिन विश्व पद्धर से असी विश्व आलू दिवस के रूप के भी मनाने। जी हाँ, विश्व आलू दिवस हर साल 30 मई नूं मनाया जाता है। ये दिन आलू की महत्ता, खुराक सुरक्षा विच इसके योगदान अते किसानां दी आर्थिकता विच इसकी भूमिका नूं समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन FAO वालों इस दिन नूं विश्व पद्धर से मनाया जाता है। आलू दुनिया की सब तो वध वरती जाने वाली फसलों विचों एक है। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं सगों पौष्टिक तत्वों नाल भी भरपूर हुंदा है। इस विच कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटाशियम अते फाइबर अधिक मात्रा दे विच मिलदा है। अज दे दिन नूं मनाउण दा उद्देश लोकां नूं आलू की महत्ता बारे जागरूक करना है। आलू दुनिया भर में करोड़ों लोगों लिए खुराक का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भुखमरी घटाउण, पोषण सुधारण अते किसानां दी आमदन वधाउण दे विच मदद करदा है। UNO ने 2023 दे विच इस दिन नूं मनाउण दी मंजूरी दित्ती सी ते पहली बार ये दिन 30 मई 2024 नूं मनाया गया सी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ने इसकी शुरुआत करके आलू की विश्व पद्धरी महत्ता उजागर किया है। तो इस साल की थीम की जो गल की जाती है तो इस साल की थीम रखी गई है वियर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लोरिश, अर्थात जिथे आलू उगते ने उत्थे जीवन अते रुजगार खिड़ते ने। यह थीम किसानों की रोजी रोटी अते आलू की खेती नाल जुड़ी आर्थिक तरक्की दर्शाती है। सो विश्व आलू दिवस सानू यह सिखाता है कि एक सधारण जी फसल भी दुनिया में भुखमरी घटाउण अते लखां लोकां दी जिंदगी नू सुधारन दे विच वड्डा योगदान पा सकती है। तो योगदान तो प्रोग्राम दे विच गीत भी पाउंदे ने क्योंकि तुहानू प्रोग्राम दे नाल जोड़ी रखदे ने ते नाल दी नाल तुहानू इधर उधर जाण दा समां भी दे दिंदे, पर इधर उधर जाके तुसी वापस आ जाणा। इस गीत तो बाद होर बहुत कुछ तुहाडे लई प्रोग्राम दे विच लैके आवांगे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अंडरस्टैंड और उतों आके मैं उन्होंने को चंगी गलत सीख के मैं इतने चाइल्ड हेल्पलाइन और मैं इतने जलंधर वेलफेयर सोसायटी इतने स्टैबलिश की है जो कि नैशनल लैवल की एन जी ओ है और वो भारत के राष्ट्रपति वालों मदर एन जी ओ जलंधर वास्ते मनोनीत की गई है। अंतर्गत असं पल्स पोलियो प्रोग्राम मैं 1996 तो अपना मनोहाना चला रहा इतने और वो जो प्रोग्राम है मैं पंजाब दे विच एज ए पल्स पोलियो मैन का खिताब भी मैंने मिलिया और मैं यूनिसेफ ने मैं इतने ऑब्जर्वर नियुक्त किया दुआबा रीजन का और यह बहुत वड्डा और कठिन काम सीगा जिहड़ा कि हिंदुस्तान दे विच नहीं किया गया कहिंदे सन कि नहीं कर सकते उहदे नाल असीं वलंटियर तैयार किए लोगों नूं तैयार किया और बहुत अच्छा जिहड़ा असीं तालमेल करके जिहदे 2010 च पूरा करना सी वो असीं मुश्किलां दे विच खाते करदे 2013 दे विच जाके असीं भारत नूं पोलियो मुक्त किया और उहदे नाल नाल मैं एक एंबूलेंस सेवा है जिहड़े मेरे कोल पंजाब दे विच 100 तों वध एंबूलेंसां ने जो कि पंजाब दे वख-वख राज मार्गां दे उत्ते तैनात ने और वो असीं जख्मी लोगों नूं इहदे नाल चुक के रोड दे उत्ते एक्सीडेंट हुंदा जिहड़ा उह साडे जवान जिहड़े ने असीं जिहड़ी 100 एंबूलेंस है पंजाब दे डायरैक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने दित्ती है उह साडे चेयरमैन ने मैं सैकटरी हैगा जी पंजाब दा
1: जी
0: साडे कोल इहदे विच एक घंटा हुंदा जी एक जिहड़ा एक मरीज जख्मी हुंदा उहनूं असीं इक उहनूं गोल्डन आवर कहिंदे आ असीं उहनूं बचाउणा हुंदा हस्पताल च उहदी जान बचाउणी
1: जी। अजकल वैसे असं देखते हैं डॉक्टर साहब कि सड़कों के उत्ते जो भी कोई हादसे होंगे है ना तो लोग सब तो पहला मोबाइल चुक के लाइव होना शुरू कर देंगे ने कि इस तो पहला कि तुसी उस दी मदद करो क्योंकि किसी की जान जड़ी है जान तो वध के कीमती होर कुछ नहीं होंदा ते वो कुछ पल जड़े आ वो किसी दे मदद दे लई उस दी जिंदगी नू बचा सकते हैं तो तुसी जिथे इन्नियां सेवावां वधिया दे रहे हो लोगों नू जिंदगी दे रहे हो उस दे लई असी बहुत बहुत तुहाडा शुक्र अदा करते हैं। तो तुम कि समझते हो कि समाज सेवा की सब तो वध लोड़ कित्थे महसूस होंदी है?
0: देखो जी हर पल हर मोड़ हर जगह से सानू लोड़ है क्योंकि नानक दुखिया साहब संसार दुख तकलीफा मदद ये हर जगह से लोड़ है और लोड़ दे विच निस्वार्थ जो काम कर रहे हैं दैन प्रभु जिहड़ा परमात्मा तुहाडे नाल एक एनएसएस दे विच स्लोगन है कि आई वर्क फॉर यू एंड मेरे भी साधा स्लोगन है कि आई वर्क फॉर हिम मैं परमात्मा लिए काम करना परमात्मा मेरे लिए काम करना मैं कभी पैसे की घाट नहीं आई और मैं एक चाइल्ड हेल्पलाइन में रन करता जी मेरा 1098 टेलीफोन नंबर है और एंबूलेंस से मेरे को 102 टेलीफोन नंबर है ये मैडम साढ़े को बच्चे छो वे चिल्ड्रन होंगे ने जिड़े कि घंटे का लिफाफे च पैक करके जिंदा बच्चे ढेर से सुख जाते लोग और सवेरे सवेरे जो लोग सैर करते कीड़िया खा जाए नखा तो बच्चा चला तो फिर पुलिस को कॉल कर दे दैन पुलिस कॉल मी 1098 से मैंने कॉल कर दी है मैं उन्होंने फिर बच्चों स्टे होमां हालात के मुताबिक जो पिंगला कर तो पिंगला कर जो साथ है तो ठीक बच्चा तो होर स्टे होमां चलीदा और असी सब तो वध अमीर बंदे बच्चा देगा क्योंकि एक तो बेचारे अगे ढेर से सुटता गया असीं मैं कभी 100 तो वध अज तक बच्चे बचा चुके हैं मैं कभी दूसरी बार उस बच्चे नूं मिल नहीं गया क्योंकि मेरा मोह हो जाता उस बच्चे नाल मेरे बच्चे कोई 7-स्टार होटल के मालिक होंगे पिछले सालों च साडे कोल इक हैलीकॉप्टर से जज साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट के बच्चा लैन जलंधर तो इतने नारी निकेतन से मैं डायरेक्टर भी हूँ नारी निकेतन का इस तरह असीं बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े बच्चे जिहड़े ने बना उन्हां दी फिर असीं शादियां करदे जिहड़े बच्चे रह जांदे ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣੇ ਲਾਏ ਆ ਅੱਜ ਕੇ ਹੋਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ
1: जी। देखो परमात्मा ने इंसान तो सब नू बना के भेजिया पर असली इंसान उही हुंदा है जिस दे विच इंसानियत जिंदा रहे ते तुसी इंसानियत दी जिंदा मिसाल हो साडे सारयां दे लई। डॉक्टर साहब अज साडे समाज दी त्रासदी है कि बेशक सिक्ख्या दा पद्धर जिहड़ा बहुत उच्चा हो चुका है अज भी सिक्ख्या असी पढ़े लिखे लोग देखते हैं कि जिथे कुड़ियां दा अनादर जमदियां धीआं नूं जिहड़ा कूड़े दे ढेर दे उत्ते सुट्टिया जांदा बच्चे मुंडिया दे विचों ज़्यादातर मैनूं लगदा इह दर कुड़ियां दी होएगी ते उस युवा पीढ़ी नूं वध तों वध सुचेत करन दे लई जां समाज सेवा दे नाल जोड़न दे लई तुसी साडी युवा

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: घर खरीदो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते।

0: और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6वें चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श

0: किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल 2 क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स

0: बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region.

0: डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय के वधीक सकत्तर असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी ते पछमी एशिया खेतर च भारतीय दूतकार भारतीय नागरिकां नूं समय सिर सहायता प्रदान कर रहे ने। इस दौरान बंदरगाहां जहाजरानी ते जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशक उपेश कुमार शर्मा ने दस्सिया कि मंत्रालय समुद्री यात्रियों की भलाई ते सुचारू समुद्री संचालन नूं यकीनी बनाउण वास्ते काम कर रहा है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय परिवारक सेहत सर्वेखण के छेवें दौर के अंकड़े जारी किए। सर्वेखण मुताबक भारत ने मां ते बच्चे की सेहत पोषण ते वित्तीय सुरक्षा विच तेजी नाल तरक्की की है। सर्वेखण के मुताबक संस्थागत जनेपे 88.6% तो वध के 90.6% हो गए ने। सर्वेखण विच इह वी कहा गया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 ते बनी हुई है। सर्वेखण मुताबक 12 to 23 महीनों की उम्र के बच्चों लई टीकाकरण कवरेज लगातार 96% तो उपर बनी हुई है। सेहत मंत्रालय ने दसी है कि यह सुधार मिशन परिवार विकास समेत राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रोग्रामा के निरंतर प्रभाव को दर्शाते हैं। सर्वेखण ने औरतों के डिजिटल समावेश के वित्तीय सशक्तिकरण में भी स्थिर प्रगति हुई है। इस विच कहा गया है कि इंटरनेट की वरतों करने वाली औरतों की गिनती लगभग दुगनी होकर 64.3% हो गई है। सर्वेखण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत के सेहत सुरक्षा पहलकदमियों ने सेहत संभाल वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है। पंजाब नगर निगम चोणां विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 26 मई नूं होईआं 8 नगर निगमां 75 नगर कौंसलां ते 19 नगर पंचायतां दीआं चोणां विच 1,977 वार्डां विचों 958 ते जित दर्ज कीती है। कांग्रेस 397 वार्डां ते जित नाल दूजे स्थान ते रही। श्रोमणी अकाली दल ने 192 वार्ड जदकि बीजेपी ने 172 ते बहुजन समाज पार्टी नूं सिर्फ 7 वार्ड ते जित मिली है। दिलचस्प गल इह है कि आजाद उम्मीदवारां ने 251 वार्ड जित के तीजा स्थान हासिल कीता है। उन्हां दी गिनती जो श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी तों वी वध है ने प्रमुख राजनीतिक पार्टियां च चिंतावां वधा दित्तियां ने। इस शहरी संस्थावां दीआं चोणां च कुल 7,554 उम्मीदवार चोण मैदान च सन। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग अज सवेरे भारत के 5 दिन दौरे पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं। उन्होंने नाल एक उच्च पदरी वफद भी होगा जिस विच कई कैबिनेट मंत्री सीनियर अधिकारी ते कारोबारी आगू शामिल होंगे। यह उन्हों का राष्ट्रपति वजो भारत का पहला दौरा होगा। गया च म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर ते सुजाता मंदिर च प्रार्थना करेंगे। राष्ट्रपति अज बाद विच नवी दिल्ली पहुंचेंगे। वह अज शाम नूं विदेश मंत्री डॉक्टर HS शंकर नाल मुलाकात करेंगे। कल राष्ट्रपति वालों म्यांमार भारत व्यापार फोरम च हिस्सा लैण की उम्मीद है। कल नवी दिल्ली च पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं विदेश मंत्रालय के बुलारे रणदीप जायसवाल ने दस्सिया कि दोवां नेतावां च मुलाकात दौरान म्यांमार भारत संबंधां दे सारे पहलुआं ते चर्चा कीती जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार नवीं सुरक्षा चुनौतियों नाल निजिठण विच सीमा सुरक्षा बल नूं होर प्रभावशाली बनाउण वास्ते इस नूं वाधू जिम्मेवारियां सौंपण ते विचार कर रही है। अमित शाह ने बयान कल गुजरात के भुज विच भारत पाकिस्तान सरहद ते दो नवीं सरहदी चौकियां दा उद्घाटन करन तों बाद दित्ता। उन्हां कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की 60वीं वरेगंढ ते सरहदी सुरक्षा की धारणा नूं पूरी तरह बदलन का फैसला लिया गया। उन्होंने एक चतुर्भुज सुरक्षा ग्रिड की स्थापना का ऐलान किया। यह सिर्फ सरहदी सुरक्षा के रवायती दृष्टिकोण की बजाय खेतर सुरक्षा की एक नवी धारणा पेश करता है। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी विच बल कर्मचारियों के नाल जनता सिविल प्रशासन स्थानक पुलिस ते फौज की भी मुख्य जिम्मेवारी होगी।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र सिक्ख्या अभियान तहत ग्रांटा जारी करन ते वरतों संबंधी एक व्यापक समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग विच समग्र सिक्ख्या अभियान दे तीजे गेड नूं वधेरे प्रभावशाली पारदर्शी ते नतीजा मुखी बनाउण ते जोर दिता गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री प्रधान ने दस्सिया कि इस साल समग्र सिक्ख्या अभियान PM पोषण उल्लास PM श्री ते होर प्रमुख योजनावां दा तालमेल करके एक एकीकृत पहुंच अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कूल सिक्ख्या प्रणाली च बेहतर तालमेल ते प्रभावशीलता नूं

0: jalandhar@prasarbharati.gov.in.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
1: फिर तू
2: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
3: 10 लाख दो बच जाओगे।
1: सर एना कितु ले आवा?
3: एक लिंक भेजा है, उड़े प्रोसेसिंग लई
2: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
1: सर 2 लाख
4: की होया पापा?
1: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
4: घबरान की लोड़ नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
3: आप पैसे गवाओगे, RBI कहिंदा है।
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 343.6 MHz या 973 kHz से। हुण पेश है प्रोग्राम महक पंजाबी। महक पंजाबी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गीत तुहानू सुना रहे हैं सुनिधि चौहान के साथियों का गाया, फिल्म अंग्रेज़ विचों लिया।

जी हाँ दोस्तों, तुसी सुन रहे हो अपना मन पसंद प्रोग्राम फिल्म संगीत। इस प्रोग्राम दे विच एक खास थीम नू लै के तुहाडे तक गीत पेश कीते जांदे ने, ते अज दी थीम तुसी बिल्कुल समझ गए होवोगे। जी हाँ, अज दी थीम है जुदाई। जी हाँ दोस्तों, जदों गल हुंदी है दिलां दी, एहसासां दी, उन्हां यादां दी, जिहड़ियां कि कदे भी साथ छड्ड के चलियां जांदियां ने पर फिर भी साडे नाल रहिंदियां ने। जी हाँ, वो एहसास जिस दे विच मुहब्बत तां हुंदी है पर साथ नहीं हुंदा। अज दे साडे थीम जुदाई कुछ अजिहे रिश्तियां दी गल कर रहा है जो किस्मत दे विच नहीं हुंदे, जां कुछ खास कारणां करके साडे किस्मत दे विचों चले जांदे ने पर दिल दे विच उमर भर जिंदा रहिंदे ने। दोस्तों, जुदाई सिर्फ दूरियां दा नाम नहीं हुंदी, कदी ये यादां दी बारिश बन जांदी है ते कदे कदे किसे दी आवाज़ सुनन दी तड़प भी बन जांदी है। ते आओ फिर इस एहसास नूं प्रोग्राम दे इस गीत राही मानदे आ।

तेरे बिना हर खुशी अधूरी जी लगती है, ये जुदाई भी किन्नी जरूरी जी लगती है। दिल तो अज भी तेनू ही चाहता है पर किस्मत बड़ी दूरी जी लगती है। जी हाँ दोस्तों, जुदा हो के भी दिल दे जिहड़े कोल रहिंदा है उही यादा दे मौसम दे विच हर पल नाल रहिंदा है। कुछ मुहब्बत अधूरियां होके भी मुकम्मल लगदियां ने क्योंकि उन्हां दे विच शिकायत घट ते इंतजार ज़्यादा हुंदा है। कदे कदे जुदाई भी प्यार की गहराई दस जाती है।

याद करना तां मुहब्बत करन तों घट नहीं हुंदा। जी हाँ, ये यादा भी किन्नियां अजीब हुंदियां ने ना, कदे हसा दिंदियां ने, कदे इकदम चुप करा दिंदियां ने, कदे वो दूर होके भी अपना लगता है, क्योंकि साडी धड़कन दे विच हर वेले उसका नाम लिखिया लगता है।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से। हुण सरोते अपने खता के जवाब सुनेंगे। पेश है प्रोग्राम तुहाड़ी चिट्ठी मिली।
3: प्रोग्राम तुहाड़ी चिट्ठी मिली सुनने वाले सारे दोस्तों को प्यार भरी नमस्कार। तो मैडम प्रभजोत जी, तुहानू भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत।
4: तो तुहाडा भी सोन जी बहुत बहुत स्वागत ते नमस्कार, ते सारे सुनने वाले नू भी नमस्कार
3: जी। और अज साडे कोल देख रहे तो बहुत सारी चिट्ठियां भी आई हुई ने, ईमेल्स भी आई हुई ने, और मैनू लगता कि साडे स्रोते सानू बहुत प्यार करते ने।
4: बिल्कुल जी, प्यार तो बहुत सारा करते ने, पर इस चिट्ठियां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला अज असी एक विशेष गलबात करनी है।
3: दो गल्लां करनी है। एक गल तो हैगी है कि गर्मी बहुत पै रही है
4: जी,
3: और इस दे विच जिन्ना बचा जावे उन्ना बचा करना चाहिए, क्योंकि सरकार वालों भी बहुत सारिया हदायतां ने कि गर्मी दे विच बहुत घट निकलना चाहिदा है
4: जी।
3: और इदे विच जड़ा हीट स्ट्रोक है उस तो बचना चाहिए।
4: और खास करके देखो जी, डॉक्टर्स भी हदायत कर रहे ने कि सवेरे 11 बजे तो लेके शाम दे 4 बजे तक तुसी बिल्कुल भी बाहर ना निकलो, जे कोई बहुत जरूरी काम है ता ही बाहर निकलो।
3: और बाहर निकलने तो पहला पूरे एहतियात लो, पानी पी के जाओ, पानी नाल रखो, सिर मुंह अपना कज के रखो कपड़े दे नाल, कपड़ा हो सके ता गिल्ला करके अपने उपर लपेट के, चेहरे दे उपर लपेट के फिर करो निकलो।
4: बिल्कुल जी, और छोटे बच्चों नू बिल्कुल भी बाहर लेके ना जाओ
3: जी।
4: और जिवें तुसी कहा है कि पानी दा सेवन, और इस दे नाल नाल तुसी लस्सी, नींबू पानी, सत्तू, जिहड़ी भी चीज लेना चाहते हो, ठंडियां
3: ओ
4: जरूर लो,
3: ओ जरूर सेवन करना चाहिए। ते दूजी गल, कल नू 31 तरीक है, 31 तरीक तंबाकू निषेध दिवस दे तौर ते असी मनांदे।
4: बिल्कुल जी, और देखो दिन मनाउण दा फायदा तां ही हुंदा जे असी इस ते अमल करिए, और जे असी अमल नहीं करना ते फिर दिन मनाउण दा कोई फायदा नहीं।
3: सानू उम्मीद है कि साडे सारे स्रोते साडी गल नू बड़े ध्यान नाल सुनिया होएगा उन्होंने, और साडी कही हुई गल ते अमल भी करनगे।
4: अज असी सोन जी शुरू करदे आं खतां तों
3: जी।
4: जी, ते देखो जी, ए मेरे कोल पहले दो खत आए ने, और लिखण वाले ने पिंड माधोपुर चौंक बत्तियां वाला जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बलविंदर बिला माधोपुरी, ते इन्हां दे बहुत सारे साथी,
3: बहुत बहुत स्वागत है जी।
4: जी, कुछ चिट्ठी एक तो इन्हां दी थोड़ी जी पछड़ के मिली है, मार्च के महीने की है। कहिंदे 21-3 नूं तुहाडा प्यारा प्रोग्राम जिहड़ा कि तुसी दोनों ने प्यारियां आवाज़ां दे विच पेश कीता, सानूं बहुत ही चंगा लग्गा, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी,
3: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्नवाद
4: जी। कहिंदे कि बाकी तुहाडा प्रोग्राम सारे बहुत वधिया चलदे ने, पर साडी चिट्ठी शामिल नहीं हुंदी। देखो जी, दिओ जवाब फिर।
3: नहीं, दोनों चिट्ठियां देखो थोड़ी शामिल हो गईयां ने
4: जी।
3: तुसी साडे प्रोग्राम पसंद करदे हो और थोनू साडे प्रोग्राम चंगे लगदे ने, इस वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। साडे स्रोते ही सानू इन्ना प्यार

0: और जान तो पहला
1: एक बारी फिर वही पहला वाला सुनेहा
0: जी
1: दोबारा देना, अपन
0: दोबारा देना,
1: दोबारा देना
0: चलो दे दियो फिर।
1: एक तां गर्मी बहुत पै रही है, सारे साढ़े स्रोते साढ़े सारे लिसनर्स इस गल का ध्यान रखन
0: जी
1: कि गर्मी दे विच 11 बजे तो लैके 4 बजे तक तो ता ही निकलो जे बहुत जरूरी है।
0: जी
1: उस दे विच भी छोटे बच्चों नूं नाल लैके जाना अवॉइड करो, ना लैके
0: बिल्कुल।
1: जाओ।
0: और खास करके सोन जी पंछियों का भी ख्याल रखो
1: पंछियों का भी ख्याल रखना है,
0: जी।
1: जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना है, घर के बाहर छत ते बनेरे ते पानी का कोई ना कोई बर्तन भर के
0: जी
1: रखो ता कि वह भी अपनी
0: बिल्कुल
1: प्यास बुझा सकन ते
0: हाँ,
1: गर्मी तो अपना बचा कर
0: बचा
1: सकन।
0: कर सकन। और जड़ी असी तंबाकू की गल की है,
1: जी
0: उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना।
1: जी
0: और
1: जी
0: चलन तो पहला तुसी पता दे दस दियो।
1: पता मैं दसदा जी, साढ़े जिहड़े नवे स्रोते जुड़े ने वो सानू खत लिखण वास्ते पता नोट कर लैन। प्रोग्राम तुहाड़ी चिट्ठी मिली मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर, साडा पिन कोड है 1440001।
0: ते ईमेल मैं दस दिनी हाँ जी।
1: जी
0: ईमेल है tcmjalandhar@gmail.com।
1: tcmjalandhar@gmail.com तुसी
0: जी
1: इस ईमेल आईडी ते सानू ईमेल कर सकते हो, तो जिहड़ा मैं पता पहलां दस्सिया है उस दे उपर सानू खत लिख के साडे प्रोग्राम दे बारे विच, साडे वक्ख वक्ख तरहां दे जिहड़े प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने उहनां दे बारे अपनी राय सानू लिख के भेज सकते हो।
0: बिल्कुल जी। ते फिर हुन लईए इजाजत,
1: जी
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हुने स्रोते अपने खता दे जवाब सुन रहे सी प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली। मीडियावेव 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, TRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां आकाशवाणी बठिंडा तो तैयार किया गया प्रोग्राम तंबाकू सेवन किन्ना घातक। आकाशवाणी दे पटियाला बठिंडा अते लुधियाना केंद्र भी इस प्रोग्राम दा प्रसारण नालों नाल करनगे।
3: श्रोतियो हर साल 31 मई नूं असीं मनाउंदे हां विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू साडी सेहत लई किन्ना घातक है इस संबंधी सुणदे हां आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश। वाचक ने मनदीप रजौरा।
4: श्रोतियो नमस्कार, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा यह विशेष प्रसारण। मैं हां मनदीप रजौरा। हर साल 31 मई नूं दुनिया भर विच विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जांदा है, जिस नूं अंग्रेजी च वर्ल्ड नो टबैको डे भी आख्या जांदा है। इस दिन दा मकसद लोकां नूं तंबाकू दे नुकसानां बारे जागरूक करना अते इस दी वरतों तों दूर रहण लई प्रेरित करना हुंदा है। तंबाकू चाहे ओह सिगरट होवे, बीड़ी, हुक्का, गुटका, चैनी खैनी या इस दा कोई भी रूप, शरीर नूं हौली हौली अंदरों खत्म करदा है। अज दे इस खास प्रोग्राम विच असी गल करांगे तंबाकू दे नुकसान बारे। चिंताजनक आंकड़े जो तंबाकू दे साडे मुल्क अते दुनिया भर दे विच नशर हो रहे ने, नौजवानां ते इस दे प्रभाव अते तंबाकू छड्डण दे तरीकियां बारे, इस संबंधी असी वख-वख डाक्टर साहिबान नाल भी गल करांगे। विश्व सेहत संस्था WHO दे अनुसार दुनिया भर विच हर साल लगभग 80 लाख लोकां दी मौत तंबाकू कारण हुंदी है, क्योंकि तंबाकू सिर्फ तुहानू मूँह दे कैंसर नाल ही नहीं बल्कि होर बहुत तरह दीयां अलामतां अते बीमारियां दे नाल प्रभावित करता है। इन्हां विच्चों करीब 13 लाख लोग उह ने जो खुद तंबाकू नहीं वरतदे पर दूजियां वल्लों वरते गए तंबाकू जां उस दे धुएं दा शिकार बणदे ने। भारत की गल करिए तां भारत विच हर साल लगभग 13 तों 14 लाख लोगों की मौत तंबाकू नाल जुड़ियां बीमारियां कारण हुंदी है। ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे के अनुसार भारत विच करीब 28% बालग लोग किसी न किसी रूप विच तंबाकू वरतदे ने। यह आंकड़े सिर्फ गिणतियां ही नहीं बल्कि टुटदे परिवारां, बीमारियां अते गवाच चुकियां जिंदगियां दियां कहानियां ने। अजकल वैपिंग अते ई सिगरेट नूं फैशन वजों दिखाया जा रहा है। भारत विच कई बच्चे अते किशोर 18 साल की उम्र तो पहला ही तंबाकू की वरतों शुरू कर देंदे ने, जो बहुत चिंताजनक गल है।

0: पे, श्वास नली के साथ जुड़े हुए, फिर नीचे जाकर पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, अगर फीमेल्स भी आजकल जो है टोबैको का यूज करने लगे हैं तो बच्चेदानी का कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर, तो ये सारे कैंसर जो है, और पैनक्रियाज का कैंसर वो जो कि काफी आजकल खतरनाक एक रूप आ रहा है, तो इस तरह के सभी कैंसर जो है तंबाकू रिलेटेड हैं। ना सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट डिजीजेस भी जो है टोबैको, क्योंकि तंबाकू जो है खून की नलियों को सिकुड़ देता है, उसके हार्ट के अंदर जो फ्लो है ब्लड का, तो हार्ट की वो सप्लाई भी हैम्पर होती है, तो हार्ट अटैक होने का भी चांस बढ़ जाता है। और इसके अलावा सांस, दमा, अस्थमा और फेफड़े का खराब होना, तो ना केवल कैंसर बल्कि और भयानक बीमारियां भी तंबाकू से जुड़ी हुई हैं।
1: डॉक्टर साहब, पैसिव स्मोकिंग की है, इस बारे सानू जानकारी दो।
0: पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जो है स्मोक नहीं करते, लेकिन आप जो जिस ग्रुप में बैठे हुए हैं वहाँ पर दो तीन लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, या जैसे आप कहीं बस में बैठे हैं तो बस में कोई स्मोक कर रहा है और आप साथ में बैठे हैं, ठीक है ना, और या फिर फैमिली के अंदर छोटे बच्चे बैठे हैं और कोई आदमी स्मोक कर रहा है, तो वो धुआं जो है वो उन लोगों में भी जाता है जो आसपास स्मोक नहीं कर रहे होते, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। बट पैसिव स्मोकिंग

0: मान लीजिए आप जो है स्मोक नहीं करते, लेकिन आप जो जिस ग्रुप में बैठे हुए हैं वहाँ पर दो तीन लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, या जैसे आप कहीं बस में बैठे हैं तो बस में कोई स्मोक कर रहा है और आप साथ में बैठे हैं, ठीक है ना, और या फिर फैमिली के अंदर छोटे बच्चे बैठे हैं और कोई आदमी स्मोक कर रहा है, तो वो धुआं जो है वो उस उन लोगों में भी जाता है जो आसपास स्मोक नहीं कर रहे होते, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। बट पैसिव स्मोकिंग भी डेंजरस है, क्योंकि 15-20% जो कैंसर का रिस्क है वो पैसिव स्मोकिंग से भी होता है। तो आपको आपके आसपास अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो आप उसको कहें कि भैया तुम यहाँ पे स्मोकिंग ग्रुप में मत करें, अगर करना है तो बाहर जाके करना है।
1: डॉक्टर साहब, तंबाकू छड्डन दे लई किस तरह के इलाज उपलब्ध ने, किस तरह के कैंसर के इलाज जो तंबाकू करके पैदा हुए ने उहदे विच दित्ते जांदे आ?
0: तो तंबाकू के लिए छोड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं और कुछ तरीके हैं जिससे आप उसके लत से बच सकते हैं और या उसे छोड़ने में आपको हेल्प करती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले ये निश्चय करना है कि मुझे तंबाकू छोड़ना है, तो योर विल पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद दवाइयाँ आपकी हेल्प करती हैं। तो उसमें एक क्योंकि तंबाकू में जो निकोटीन है वो एडिक्शन करता है, तो इस कारण से लेकिन निकोटीन कैंसर नहीं करता, तो निकोटीन जो है उसके चिंगम्स आते हैं, उसके पैचेज आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, तो उससे आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है कि आपको फिर स्मोक करने का इच्छा है, लेकिन वो बहुत ही रेगुलेटरी डोज में आपको लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे और दूसरी दवाइयाँ भी है, जैसे चैम्पिक्स नाम की नई गोली है, वो भी जो है इसमें काफ़ी हेल्प करती है इसको छोड़ने में। उसका पर्टिकुलर एक कोर्स होता है 4-6 महीने का, तो वो कोर्स आप आएँ यहाँ पे एम्स के अंदर, आप साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पर वो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी। आपको पहले ये निश्चय करके आना कि मुझे छोड़ना है, उसके बाद वो कोर्स देगा, धीरे धीरे वो दवाइयाँ जो है खत्म हो जाएंगी 6-8 महीने में, और उसके बाद आपका ये लत छूट सकती है।
1: इलाज के नाल नाल मरीजों नूं तंबाकू दे नुकसान जां सरकार वल्लों इस अजिहे भयानक बीमारी दे विच ग्रस्त मरीजों लई दित्ते जांदी सहायता बारे भी उन्हां नूं दसो, जां कोई स्कीम अजिही सरकार वल्लों की निर्देश ने?
0: तो हमारे यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि भी जैसे कोई अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, या कोई अपने भाई के ट्रीटमेंट में आया हुआ है जिसको मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, और कई बार हमें पता चलता है कि उसके मुंह में भी तंबाकू है जो लेके आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसको ये कहते हैं कि भाई आप इनको कैंसर हो गया तो आपको भी तो चांस है होने का कैंसर। हम अवेयरनेस प्रोग्राम है, अभी हमने कैंसर अवेयरनेस बस जो है वो अवेल करी है, उसमें हम गांव-गांव में जाकर पंजाब के, जैसे पहले बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज़ हैं पहले हम वहां पर जाएंगे और वहां पर उन पे पब्लिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल में जो पब्लिक आ रही है उनको, कि किस तरह से तंबाकू के सेवन को हम रोकें और किस तरह से हम इसको, अगर जो जिनको लत लग गई है उनको कैसे हम उसको छुड़वाएं, तो इस तरह के उपायों के बारे में बताएंगे और इससे क्या क्या तकलीफें होती हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे।
1: डॉक्टर साहब, अखीर दे विच तुहाडा सुनेहा सुनने वालों नूं?
0: तो मेरा सुनने वालों से यही गुजारिश है कि आप अपना जो पैसा है उसको सही जगह पर लगाएं, कि आप तंबाकू जो है इतना महंगा हो गया है, सिगरेट्स का रेट सरकार ने इसलिए बढ़ाया है ताकि आप उसका सेवन ना करें, और वो पैसा अगर आप फल फ्रूट, दूध दही, पौष्टिक आहार हैं अगर उसके लिए आप लगाएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप बीमारियों से भी बचे जा सकते हैं।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर साहब।
2: श्रोतियों, ना सिर्फ तंबाकू दे नाल पैदा होने वाला धुआं बल्कि चबे जाण वाला तंबाकू भी उन्ना ही खतरनाक है, इस नाल मुंह अते गले दा कैंसर कई गुणा वध सकदा है। तंबाकू दी वरतों करन वाले बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे साथी अजिहे होणगे जो तंबाकू नूं छड्डना चाहुंदे ने पर छड्ड नहीं पाउंदे क्योंकि इस दी लत बहुत माड़ी हुंदी है। तंबाकू छड्डण दे इन्ने फायदे होण दे बावजूद भी असी तंबाकू क्यों नहीं छड्ड पाउंदे, मानसिक तौर ते तंबाकू किस तरह सानू अपनी गिरफ्त दे विच लै लैंदा है अते किस तरह सानू अपना गुलाम बनाउंदा है, इह जानन लई असी बठिंडा एम्स हस्पताल दे मनोरोग माहर डॉक्टर जितेंद्र जुनेजा जी दे नाल गलबात कीती।
3: डॉक्टर साहब, तंबाकू जिहड़े लोग सेवन करदे ने, की कारण है कि वह तंबाकू वल खिचे जाते हैं, तंबाकू नाल बने पदार्थों वल वो खिचे चले जाते हैं, फिर अगे चल के वह उसनू छड़ नहीं पाते, की कारण है, मानसिक तौर पर तुसी इसनू किवें देखते हो?
4: तंबाकू का सेवन पूरी दुनिया काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी कॉमन है। असी अपने देश की गल करिए लगभग 1700 ईस्वी इंडिया च आया सीगा, उस तो पहले इंडिया च नहीं सीगा।
3: जी,
4: काफ़ी सारी थ्योरीज़ ने कि तंबाकू लोग क्यों लेंदे ने, उहदे च दो जिहड़े इंपोर्टेंट ने जिदे वास्ते कि अंग्रेज इनू लैके आए सीगे।
3: जी,
4: क्योंकि जे असी हिस्ट्री नू देखदे आ तां थानू समझ आएगी कि अच्छा ये क्यों इस्तेमाल होंदा।
3: जी,
4: अंग्रेज जद तंबाकू नू इंडिया च लै

0: बारिश की हर बूंद एक कहानी कह जाती है, भीगे हुए लम्हों की निशानी दे जाती है। जो दिल के करीब होते हैं बहुत, उनकी याद अक्सर बरसात में चली आती है। जी दोस्तों, बिल्कुल बारिश नाल जुड़ियां साडियां बहुत सारियां यादां हुंदियां ने, ते बारिश नाल जुड़े जिवें बहुत सारे गीत भी मौके ते चलाउणे सानूं वधिया लगदे ने, तुहानूं सुनने वधिया लगदे ने वी। इम जी ही यादां दा सिलसिला हुंदा है जिहड़ा कि समय समय ते सानूं अपनी खुशबू दे ही जांदा है, साडे मन नूं महका ही जांदा है। ते प्रोग्राम दे विच पहले कॉलर आए ने, देखते हां किहड़ी फरमाइश दे नाल आए ने। हैलो
1: पूजा मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो
1: जी? मैं मनोहर लाल सुथार, पिंड कपूर शाहपुरगंज, जिला फाजिलका तो बोल रहा मैडम जी।
0: जी मनोहर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: मनोहर लाल जी, केड़ी फरमाइश दे नाल आए हो अज?
1: मन की आके फिल्म दा गीत सुनना मैडम जी, रफी साहब दा गाया, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यही पे कहीं, क्योंकि अज मौसम बहुत सुहाना है मैडम जी।
0: तुहाडे भी इलाके दे विच बारिश हो रही है जी?
1: बिल्कुल, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जी है जी, वैसे मौसम बहुत ठंडा है जी।
0: चलो वधिया है, मौसम दे विच वधिया जिहा गीत तुहाडी पसंद आ तुहाडे तक पहुंच रहा है। शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: तुहाडा भी धन्यवाद मैडम जी।

0: तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं।
1: बिल्कुल दोस्तों, असीं भी रुक जांदे आ जदों तुहाडी फोन कॉल साडे इस प्रोग्राम दे विच आ जांदी है, ते फिर असीं भी उस फोन कॉल दे जरिए तुहाडे नाल गलबात करन दे लई, तुहाडी पसंद दा गीत सुनन दे लई रुक जांदे आ। ते बिल्कुल अगले कॉलर देखते हैं किहड़ी फरमाइश दे नाल साडे इस प्रोग्राम दे विच आए ने। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो
2: जी? मैं बहादुर सिंह पिंड बुरज राठी जिला मानसा तो बोल रहा जी।
1: जी बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
2: भैन जी बहुत धन्यवाद तुहाडा भी जी।
1: जी की कर रहे सी इस वेले?
2: भैन जी मेरा सिलाई का काम है जी, मड़ो मड़ो करी जांदे सी।
1: दुकान ते बैठे हो ते मौसम दे की मिजाज ने?
2: हाँ जी मौसम जी बदल पाई है जी, मतलब पूरी।
1: अच्छा, हजे बारिश नहीं आई जी?
2: नहीं बारिश नहीं आई जी हजे।
1: चलो असी जलंधर तो बस भेज रहे हैं बारिश, उम्मीद करते हैं कि पहुंच जाएगी तुहाडे भी इलाके दे विच जल्दी। जी जी बिल्कुल, ते गीत दसो केड़ा सुनोगे?
2: हाँ जी गीत भैन जी राज फिल्म दा बड़ा प्यारा जिहा गीत है जी, आपके प्यार में हम सवरने लगे।
1: अलका याग्निक दी आवाज दे विच खूबसूरत गीत तुहाडे तक पहुंच रहा जी, शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
2: बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे।

0: रिमझिम फुहारों सा ये प्यारा सा पैगाम है, मिट्टी की खुशबू में बसा एक मीठा सा नाम है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है जो दिलों को जोड़ दे, वही बरसात का असली जाम है। बिल्कुल जी, ये बारिश बहुत सारियां यादां नूं तुहाडियां नूं ताज़ा कर दिंदी है, ते मेरी तां बचपन दी याद बारिश दे नाल हमेशा जुड़ी हुंदी है, ते बचपन दे दिन याद आ जांदे आ। पुछ के देखते हैं अगले कॉलर दे कोलों कि उन्हां दी बारिश दे नाल जुड़ी हुई केड़ी याद है। हैलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं ना रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से।
0: रानू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम में।
1: थैंक यू। और आपके क्या हाल चाल है
0: जी? बहुत वधिया। एक तो तुहाडी जिहड़ी हसदी होई खिल खिलांदी होई आवाज़ साडे कन्नां दे विच पैंदी है ना जी, इंज लगदा है कि बस सारी खुशी साडे तक पहुंच गई है तुहाडी।
1: और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना
0: जी। बहुत चंगा लगता है तुहाडे नाल सानू भी गलबात करना है। राणा जी, बारिश का मौसम पसंद है?
1: हाँ बिल्कुल पसंद है, लेकिन ना मतलब वैसे तो मुझे बारिश में भीगना पसंद है सिर्फ, लेकिन टेरेस के ऊपर, रोड पे चलती हूँ तो वो जमता नहीं है मेरे को।
0: हाँ,
1: मतलब
0: नहीं देखो जो तो काम ते जांदे है ना, फिर बारिश जो तो हुंदी है तो उदो तो यही लगता है कि नहीं बस सारा काम खराब हो गया।
1: बारिश के बिना तो सब लोग अधूरे ही हैं।
0: बिल्कुल। ते तुहाडी कोई छोटी जी पुरानी बचपन दी याद जिहड़ी बारिश दे नाल जुड़ी होवे, की पसंद हुंदा सी तुहानू बारिश दे
1: विच? बारिश की तो मेरी यही याद है कि हम लोग ना छत पे पानी, मतलब वो जो पाइप में लगे थे तो उसमें कुछ लगा देते थे कपड़े वगैरह, पानी भर जाता ना, बस वहां नहाते थे, बस यही याद है।
0: देखो ये बचपन दियां शरारतां ने, है ना, असीं जिहड़े उम्र दे जिहड़े मर्जी दौर दे विच चले जाइए पर यह शरारतां हमेशा साडे नाल ही रहणगियां, इह यादां हमेशा साडे नाल दी रहणगियां।
1: हम तो ये चाहते हैं भले ही बड़े हो गए लेकिन शरारतें कभी कम नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, बचपना जिहड़ा है कदी भी खत्म नहीं होना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ठीक है, बचपन जिहड़ा जिंदा रहना चाहिए साडे आखिरी साह तक।
1: जी, मुझे एक गाना सुना है, मूवी का नाम है रॉय, और गाने के बोले चिट्ठियां कलाइयां, डेडिकेशन आपको रहेगा और मेरी बहन नंदनी को।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मीट ब्रदर्स अनजान ते कनिका कपूर दी आवाज़ां दे विच तुहाडी पसंद दा गीत रॉय फिल्म दे विच तुहाडे तक पहुंच रहा है। शुक्रिया कॉल करन दे लई।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: He'll be meeting a prime minister where both leaders
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: This is official visit.
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण

0: 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। तमक जलंधर पैंदी इस प्रोग्राम दे लई बस कुछ कु पलां दा इंतजार।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी तमक जलंधर पैंदी। बिल्कुल जी, कहिंदे ने जिंदगी विच उही इंसान कामयाब हुंदा है जो डिग के भी मुड़ खड़ना सीख लैंदा है। ते हाँ, जिहड़े सीख लैंदे ने इवें खड़ना, फिर मुस्कुराहटां दी कीमत उदों तक नहीं हुंदी। पर जदों इह रिश्ते अनमोल बन जांदे ने, उदों फिर मुस्कुराहटां दर बदर एक दूजे तो दूजे तक ट्रैवल करदियां ने, खिड़िया रहिंदिया ने। सो जिंदगी दे विच कामयाबी उही है जदों असी डिग के खड़ना सीख लैंदे आ ते अग्गे वधदे जाने आ। ते हाँ, प्रोग्राम जिहड़ा तमक जलंधर पैंदी ये भी कहिंदा है कि कामयाबी उदों है जदों तुसी साडे कोल अपने सुनेहे भेज देंदे हो, अपनियां पसंदा भेज देंदे हो, ते तुसी बखूबी साडे जिहड़े कंप्यूटर महाराज ने उहनां ते वी रौनकां लगा

शर्मा फैमिली। अगला मैसेज पहुंच गया जी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परीक्षा तिकुशल शाह, इन्हों के नाल नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बैन शाह, राजेंद्र शाह, इन्ह सारे ने बड़े ही प्रेम के नाल मैसेज रंग बिरंगा जहा बना के सानू भेजे है। पद्मा टाकीज नेपा नागर मध्य प्रदेश तो। अगला मैसेज पहुँच गया जी साढ़े को पी एस नहावकर ते निर्मला विशाल होना दा, इन्हां ने नरवेल महाराष्ट्र तो मैसेज किया है। अगला मैसेज साढ़े को आ पहुँचा है जी राकेश हुणा दा, राकेश हुणा दे नाल नरेश, जगदीश, अंग्रेज़ भाटी ते नाल ही इन्हां दे नाल सिंह साहब ते पिंड इन्हां दा हाँ जंडवाला। अगला मैसेज पहुँच गया जी साढ़े को, कहिंदे ने खूबसूरत जिहा गीत जरूर दईए सुना। बिल्कुल जी, सिद्धार्थ नगर दयापुर भाबली तो गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले ते अशोक येले होना दा। अगला मैसेज आ गया जी सूरतगढ़ तो जगदीश डुकिया, नाल ही परमिला, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु ते शिवम होना दा। अगला मैसेज पहुँच गया श्री फतेहगढ़ साहिब तो, साढ़े को भेजन वाले ने रामनाथ आतमपुर ते इन्हां दे नाल सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर ते हाँ खूबसूरत गीत की फरमाइश इन्हां दे नालों नाल भेज दिती है जी। विनोद बासरा बरासा ते नाल विशाल बरासा, विकास रोशनी ते शगुन होना ने भी मैसेज कल दिता है सानू, श्री गंगानगर तो मैसेज आया जी। अगला मैसेज पहुँच गया जी साढ़े को मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर ते फिरोजपुरी, मनीष बजाज ते कह रहे ने कि गीत भी सुना दियो जी। बिल्कुल जी, मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा होना ने मैसेज किया है गंगानगर राजस्थान तो पदमपुर जिला। लो जी अगला मैसेज आ गया है जी इंजीनियर अशोक ग्रोवर होना दा, परवीन ग्रोवर, विक्रम ग्रोवर ते नाल ही इन्हां दे अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर होना ने मैसेज भेजा जी। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो ये मैसेज आया सानू। ते अगला मैसेज साडे कोल इन्हां दे नाल नाल निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया होना दा। बिल्कुल जी इन्हां दी थां वी है ते ये मैसेज रलिया मिलिया सारे ही दोस्तों ने भेज दिता है जी, इन्हां दे पूरे परिवार ने। अगला मैसेज है जी सादुल शहर तो राजस्थान तो राजकुमार रिवाड़ होना दा, चंद्रकला रिवाड़ इन्हां दे नाल। अगला मैसेज आ गया जी बागपत उत्तर प्रदेश तो, भेजन वाले ने संजय ढींगिया, नमन ढींगिया ते अपार ढींगिया होना दा मैसेज है बागपत तो। लो जी अगला मैसेज है पिंड काबुल शाह तो, खुबन जिला फाजिलका तो वधवा सिंह, बलकरन, तनु, पवि, जसी ते इन्हां सारिया ने ही प्रेम ते सत्कार दे नाल बड़ी ही खूबसूरत नमस्कार भी भेज दिती है। लो जी इन्हां सारिया दी पसंद दे उत्ते असी भी एक खूबसूरत गीत फरमाइश किया होया तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं।

पूर्वा ते तुरीदों, ये मैसेज साढ़े तोल आया है जी। किते किते थोड़ा जहा कोमा लगा दिया करो ना, तो फिर पता चल जाता है कि तुहाड़ा नाम किते ख़त्म हो रहा है तो तुहाड़ी खूबसूरत थां कितों शुरू हो रही है। खैर, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा होना दा मैसेज है। डॉक्टर मदन लाल वर्मा भी इन्हां दे नाल नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो मैसेज है जी। अगला मैसेज सानू भेजिया है जी गुरमीत सिंह होना ने, मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो मैसेज आया। सेक्टर स्टार्ट, बिल्कुल जी, सेक्टर स्टार्ट तो मोहाली चंडीगढ़ तो मैसेज है जी। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तो, हाँ हाँ डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो मैसेज है जी। शुभ चंद्र बजाज होना दा, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज इन्हां दे नाल। टैली वाला बोल्द जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतरथ, अनवर चतरथ, लाजवंती ते अनीता राणी दा मैसेज है जी। अगला मैसेज पहुँच गया जी साढ़े कोल, कहिंदे ने गीत ते जरूर सुनाइयो पर नाम जिहड़ा ना वो साडा पूरा पहुँचाइयो। सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर हुणी, सनी मुनी काका, बिट्टू लाडी मोहन ते मास्टर जनक नगर तो जलंधर तो मैसेज किया है जी। वाह जी वाह। वड़िंग खेड़ा तो मैसेज है जी पंजाब तो, मंटू टोमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा होना दा। अगला मैसेज आ गया जी, ये भी बड़ा खूबसूरत रंग बिरंगा सजिया होया। सुनील पाठक होना दा, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा ते भाई सुच्चा सिंह पाठक होना दा मैसेज है। अनारकली बाजार जगराओं तो भेजे है जी। लो जी, फिर इन्हां सारिया की पसंद के प्रोग्राम दे विच असी अगला गीत शामिल करन जा रहे हैं रोमी होना दी आवाज़ दे विच।

0: सिजय जी, बिल्कुल जी, नमस्कार। दिनाल भेज रही हूँ खेल बाजार पानीपत तो। नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा ते नाल ही नाल नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो मैसेज, पीयूष सिक्का होना दा, कोयल सिक्का ते नाल ही डुगू भाविका सिक्का एना दे नाल। अगला मैसेज पहुँचिया जी सानू गिद्दड़बाहा तो। मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा होना दे, पायल नितिशा ते नाल ही हिना शाह तनेजा इना दे नाल। अगला मैसेज साढ़े कोल पहुँच गया है जी, बुरज लाल चावरिया, रोशन लाल चावरिया, गगन विश्वास, अभिषेक ते सारा ही परिवार जिहड़ा, बजरंग बीरवाल, योगिता डिंपल ते वर्षा होना सारे दे सारे जाने नाल, सिरसा हरियाणा तो मैसेज आ गया जी साढ़े कोल। अगला मैसेज है जी, कोट मोहल्ला चुखटू बुलंद शाह तो मैसेज भेजा है, मोहम्मद सैयद अब्बासी, नवहत परवीन अब्बासी, शाह नवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान, अबान ते पूरा ही अब्बासी परिवार जिहड़ा है वह कह रहा है असी तुहानू मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ते असी तुहाडी मैसेजेस पढ़ रहे हैं। मेन बाज़ार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना तो मैसेज है जी, इकबाल सिंह हठूर, नाल ही नाल राजेंद्र कौर, इंजीनियर अमनदीप सिंह होना दा मैसेज, सिमरजीत कौर होने नाल इन्हों दे नाल। ते लो जी, खूबसूरत जिहड़ा गीत है ओदी फरमाइश सानू पहुँच गई है नालों नाल। बिल्कुल जी, खूबसूरत गीत जिहड़े ओह असीं तुहानू सुना रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम जिहड़ा है तुहाडियां फरमाइशां दा है। ते लो जी, एक छोटे जिहे अंतराल तो बाद आके सुनाने आ तुहानू तुहाडे सारियां दा फरमाइश कीता होया गीत।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: This is official visit.
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों

0: के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लो जी हुन पेश है प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी, नचूंगी सारी रात धरती नू कली करा दे, किन्ना प्यारा गीत है।
1: जी, और इस गीत दी फरमाइश तां कीती वी सी महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग जी ने मंडी हरजी राम मलोट तों।
0: जी
1: ए स्पेशली यही गीत चाहुंदे सी, और इन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन चार चिट्ठियां भेजियां सी
0: इसी गीत वास्ते।
1: हाँ
0: ते जेड़ी साडे कोल अगली फरमाइश आई है ना, वो आ रही है हरजीत हरमन होना दे गीत दी। ते फरमाइश कर रहे ने डॉक्टर बनवारी जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, समता जयपाल, मोक्ष दिया, सुशांत ते विक्रम जयपाल। ते ये फरमाइश कर रहे ने संगरूर तो। अगला जड़ा खत आया है गिदड़वाहा पंजाब तो, मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, बेबी हिनाशा, बेबी कैरवी और ते इन्हां दे सारे साथी। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो भी खत आया है, और एक खत लिखन वाले ने टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप ते इन्हां दे बहुत सारे साथी।
1: टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तों चिंटू, सवी, सनप्रीत, प्रसिन, आशु, रिशी, पिंकी, सीरत, गुड़िया, सोनू बत्रा ते पूरा बत्रा परिवार। फिरोजपुर तों रम्मी, सुखदीप, गुंजोत, लखबीर, जसविंदर ते बलजीत। और गुरदासपुर तों निमिषा मेहता, उषा, शैली, चेतन मेहता, अश्विनी, संदीप, मोनिका, यश, संजीव मेहता ते पूरा मेहता परिवार। ए चाहुंदे ने कि हरजीत हरमन की आवाज़ च गाया गीत सुनाया जाए, तो फिर सुनते हैं।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: हाँ जी, ब्रेक भी गीत भी सुन लिया ते ब्रेक भी ले ली ते ब्रेक तो बाद एक बार फिर हाजिर हो गए हैं।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:00

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 31 मई नूं आकाशवाणी उत्ते अपने मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल विचार सांझे करनगे। ये प्रोग्राम हर महीने प्रसारित होण वाले प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इसका 134वां एपीसोड होगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी अते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी खबरां दी वैबसाइट अते न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप से प्रसारित किया जाएगा। इस नूं AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री के दफ्तर अते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों उत्ते भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद इस प्रोग्राम नूं खेतरी भाषावां विच भी प्रसारित करेगा। पंजाब विच नगर निगमां ते नगर कौंसलां दी चोण प्रक्रिया मुकम्मल होण तो बाद अज पंजाब मंत्री मंडल दी मीटिंग सद्दी गई है। मीटिंग च सूबे च नवीं योजनावां उत्ते फैसले लैण बारे विचार वटांदरा कीता जाएगा। पंजाब च नगर निगम चोणां च सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने 26 मई नूं होईयां 8 नगर निगमां, 75 नगर कौंसलां अते 19 नगर पंचायतां दीआं चोणां च 1,977 वार्डां विचों 958 ते वड्डी दर जित दर्ज कीती है। कांग्रेस 397 वार्डां उत्ते जित नाल दूजे स्थान उत्ते रही। श्रोमणी अकाली दल ने 192 वार्ड, जबकि BJP ने 172 अते बहुजन समाज पार्टी नूं सिर्फ 7 वार्डां उत्ते जित मिली है। दिलचस्प गल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारां ने 251 वार्ड जित के तीजा स्थान हासिल किया है अते उन्हां दी गिणती श्रोमणी अकाली दल ते BJP तो भी वध है। इस शहरी संस्थावां दीआं चोणां च कुल 7,554 उम्मीदवार चोण मैदान च सन। भारत दे चोण कमीशन ने पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR अधीन वोटर सूचियां दे प्रकाशन संबंधी समा सारणी च सोध कीती है। पंजाब दी मुख्य चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने कमीशन वल्लों जारी इस अंशक सोध संबंधी पत्र दा हवाला दिंदिआं कहा है कि पंजाब विच खरड़ा वोटर सूचियां 31 जुलाई की थां उत्ते हुण आउंदी 3 अगस्त नूं प्रकाशित कीतीआं जाणगीआं। इस तरह वोटर सूचियां संबंधी दावे अते इतराज़ दायर करन दी म्याद हुण आउंदी 3 अगस्त तों 2 सितंबर तक होवेगी। दावियां अते इतराज़ां संबंधी निबेड़ा 3 अगस्त तों 28 सितंबर तक कीता जाएगा। मुख चोण अधिकारी ने कहा कि बाकी समा सारणी लंघी 14 मई नूं जारी नोटिफिकेशन वांग जारी रहेगी। पंजाब च अज सवेरे हल्की तो दरमियानी बारिश पैन नाल तापमान च गिरावट दर्ज की गई है। पठानकोट च गड़े भी पए अते गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर समेत बहुत सारिया थावां ते बारिश तो बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग वालों सारे पंजाब च हल्की तो दरमियानी बारिश अते तेज़ हवावां चलन संबंधी येलो ते आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समाणा, पटियाला, राजपुरा अते डेरा बस्सी विच बारिश संबंधी रैड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सवेरे दर्ज किए गए घट्टो घट तापमान च शुक्रवार के मुकाबले अज -1.4 डिग्री सैलसीयस की गिरावट दर्ज की गई। बीते दिन जिथे घट्टो घट तापमान 22 डिग्री सैलसीयस तो 26 डिग्री सैलसीयस के दरमियान सी, उत्थे अज यह 18 तो 26 डिग्री सैलसीयस दरमियान दर्ज किया गया। पठानकोट के थीन डैम इलाके घट्टो घट तापमान 18.8 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया है। IPL क्रिकेट च गुजरात टाइटन्स की टीम मुकाबले के फाइनल च पहुँच गई है। कल न्यू चंडीगढ़ च होए दूजे क्वालीफायर च गुजरात टाइटन्स राजस्थान रॉयल्स नूं 7 विकटां नाल हरा के फाइनल च पहुँची है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विचकार फाइनल मैच कल अहमदाबाद च शामी 7 बजे खेडिया जाएगा। भारत ते इंग्लैंड दरमियान दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ब्रिस्टल च खेडिया जाएगा। यह मैच भारतीय समय मुताबक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने वीरवार को चैम्सफोर्ड विच पहले मैच विच मेज़बान इंग्लैंड नूं 38 दौड़ां नाल हरा के 3 मैचों की लड़ी विच 1-0 की लीड ली है। ये नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। साडा एक्स हैंडल है @AIR_RNU जलंधर। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे 1:40 ते। नमस्कार।

जलंधर के अंदर तो बोल रहे हैं आप। दिन दा सवाई खोया है, लैके हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम फौजी वीरा लई।

लो जी, प्रोग्राम चल रहा है जी। फौजी वीरां लई ते फौजी वीरो, अगला गीत असी तुहानू सुनवा रहे हां, बरसों रे मेघा। बिल्कुल ऐश्वर्या राय ते फिल्माया गया ये खूबसूरत नगमा इस खूबसूरत मौसम दे विच।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउल लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से

0: शुरू करने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तआल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मैार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुश्तरका अजम और मुसल्ला अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मैार, क्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुकतः नजर अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअस्सर क्यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन डी चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमात को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज खिदमात को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। चार दहाइयों से ज्यादा मुश्तमिल खिदमात के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमात को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश फौजी करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान की जगह लेंगे। पनाजी की कला अकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया जहां सकाफती तबादला, समाजी हमाहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमात और माहौल के बारे में बेदारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हुसूल याबी की तारीफ की। पनाजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीकेकार टीसीएस की फनी खराबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहानात जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर शुरू होने वाले इम्तहानात के वक्त में रद्दबदल किया गया है। उम्मीदवारों को 2:30 बजे से दाखिले की इजाजत दी जाएगी जबकि इम्तहान 3 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। एनटीए ने मजीद कहा है कि सुबह के इम्तहान में बैठने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा और उन्हें पेपर मुकम्मल होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी। एजेंसी ने तलबा और वालिदैन को परेशानी होने के लिए अफसोस का इजहार किया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है जिसमें आज़ादशुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली सेहत तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। यह 6ठा कौमी जायजा सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 2023-24 के दौरान किया गया था। इस जायजे में 715 अजला पर मुश्तमिल 6,79,000 घरानों को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर में बैन अल-अक़वामी सरहद के पास रह रहे लोगों ने मरकज के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सरहद से 15 किलोमीटर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कार्रवाइयां हटाई जाए।

0: रखने की बात कही गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के दौरान यह फैसला किया था। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस अमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बकरोर के सुजाता मंदिर गए और बोधगया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर ऊ मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की आज से फिर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्दरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्दरमैया का इस्तीफा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब डी के शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानून साज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से सीएलपी मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानिगार से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई हैं जबकि औरंगाबाद से 2 अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया जिला से 1-1 मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लब्बैतू में अवार्ड हासिल हुए हैं। ये अवार्ड हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शैंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेक्सेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो जरूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाजे के बावजूद अमरीका एशिया बहरुलकाहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून। फौजी वीरो एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाड़ा प्रोग्राम फौजी वीरा ले च। लो फौजी वीरो, प्रोग्राम दे विच अगला नगमा असी तुहाड़े लिए चुन लिया लगान फिल्म दे विचों। इसनु गाया है उदित नारायण ते अलक्या याकिनी खोना ने।

0: आज ब्रिस्टल में तीन मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।

0: अभी जारी है, इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही

0: सिद्धि का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु

0: वायनाड, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 बजे नहीं लेके हाजिर हो गए हैं जी प्रोग्राम रंगली धरती। आज दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुन दिया सुखजिंदर जीत यमला होना दे गाए लोक गीत। आओ इन्हां दी आवाज़ च सुन दिया पहला माया।

0: रंगली धरती दे इस प्रोग्राम दे विच अज तुसी सुखजिंदर जीत यमला होना दे गाए लोक गीत सुने। ते हुण समा कह रही है कि बिल्कुल ये प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करना होवेगा, सो दे दिओ इजाजत। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम रंगली धरती, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 3 बज रहे ने। साड़ी अज दी पहली सभा दे प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदे ने। अगली सभा दे प्रोग्राम लैके ठीक 4 बजे फिर हाजिर होवांगे। तद तक लियो दिओ इजाजत।
1: डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 3 बज चुके ने। हुण पेश ने मुख खबरां।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स, 100.9 मेगा हर्ट्स, ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। चार बज के 39 सैकेंड। जी हाँ, आओ हुण असीं तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हाँ, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल हुए कर स्नाना, गुरपूरै कीने दाना। इसे रचना दे अंत विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, साध संग मल्लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभाया। इस फरमान विच गुरु साहिब ने मन दी सुचमता ते प्रभु प्राप्ति दी सर्वोत्तम विधि दर्शाई है। भारतीय संस्कृति विच पुरबां दे मौके ते इशनान दी महिमा नूं अणगौलियां तां नहीं कीता जा सकदा, पर ए इशनान सदीवी सुचमता प्रदान नहीं करदे। सच्चा इशनान मन नूं निर्मल करना है, जिस दे लई सत पुरशां दी संगत लोड़ींदी है। सत पुरशां तो भाव सृष्टि विच रमे हुए रामदेव दासां तो है। उन्हां दी संगत मानो सुचमता प्रदान करन वाला सरोवर है। इस करके गुरु साहिब फरमाउंदे ने, संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। सरवण करदे हां भाई इंद्रजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। इस शब्द गायन कीता सी पाई इंद्रजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच तूड़ी इशनान दी वी महिमा बयान कीती गई है। इत्थे धूड़ तो भाव रेण है, जिस तो भाव निम्रता अते हलीमी है। हलीमी ते निम्रता सच्चे गुरु दी शरण विच पै के प्राप्त हुंदी है। ते गुरबाणी विच एक वचन विच संत पद केवल गुरु लई है। इसे करके सच्चा इशनान सच्चे गुरु दी सेवा विच ही है। भगत कबीर जी ऐलानिया तौर ते इस तत्थ नू नशर करदे हन। सुनदे हां गुरप्रीत सिंह न्यामिया होरा पासों ए वार्ता। साचा नावण गुर की सेवा।
1: ए पावन तुक भगत कबीर जी वल्लों उचारण कीती गई है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 484 ते सुशोभित है। यह आसा राग दा शब्द है। भगत कबीर जी अजिहे संत महापुरश होए हन जिन्हां ने लगभग 600 साल पहला रूढ़ीवादी लोकां विच अजिहियां क्रांतिकारी गल्लां आखियां कि इस बारे कोई उदों सोच भी नहीं सी सकदा। आप जी दी बाणी नूं गुरु साहिब जी दी बाणी दे तुल सन्मान दे के गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज कीता है। आप जी ने लोकां नूं हरेक गल बादलील समझाई है। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा रहाओ। भगत जी ने दुनियावी तौर ते चंगे बनन वाले पर असल विच माड़े अमलां वालियां दा हाल वर्णन कीता है। भगत जी दा फुरमान है कि बाहरों भावें जिन्ने मर्जी चंगे बने जाइए ते अखौती ऊचियां जातां दा अभिमान करदे रहिए, पर जदों तक असीं अंदरों चंगे नहीं हुंदे तद तक प्रभु दी दरगाह विच कबूल नहीं हो सकांगे। भगत जी दा जन्म बनारस कांसी विच होया, जो कि एक पवित्र शहर मन्या जांदा है। दुनियावी जात वर्ण दी वंड करन वालियां अनुसार आप जी दा पालन पोषण

पूजा राम एक ही देवा, साचा नामण गुर की सेवा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरचंद सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੀਕ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में

0: मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, 100.9 मेगाहर्ट्ज ते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੰਬਰ 1।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा।
3: हाँ जी।
4: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
3: क्यों? पर मैं
4: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
3: इन्ने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
3: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
4: ओए,
3: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
5: हेलो मम्मा।
3: हाय।
6: आरबीआई कहिंदा है
3: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: आकाशवाणी ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮੂਹ ਗਾਨ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਮਹਿਲਮਾ।

यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 6:30 बजे ने हुण तुसी देहाती प्रोग्राम सुनोगे।

0: हाँ जी,
1: अज ना एक नाटक है अपने कोले हार मन्नी।
0: अच्छा,
1: वैसे तो कोई मानता नहीं
0: वड्डी गल आ मान लेनी
1: ना, जे मन लो ते
0: किते किते मान भी लेनी चाहिए,
1: किते मान लेनी चाहिए है। हार मन्नण दे विच भी जित हुंदी है तुहाडी, इह तां संधू साहब तुहाडे सोचण दा तरीका है। ओके, जिद नाल मसले बिगड़ जांदे आ, रजामंदी कर लो निबड़ जांदे आ। जे एक बंदा निम भी जाऊगा ते मसला किड्डा निबड़ गया।
0: बिलकुल,
1: सो इस करके जिहड़ी हार मन्नणा है इह भी इक गुण है, इह अवगुण नहीं है। मौके दे लिहाज नाल हार मन लेनी भी ठीक हुंदी है। पर आपां देखदे आ अखाड़े दे विच पहलवान मन नहीं लैंदे भी ठीक है यार मैं हार गया, दूजा दूजे नूं थापी दिंदा, फिर मन लेनी चाहीदी है। नाटक है आपां सुणाउंदे आ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मक

विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जानें आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे, तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है, तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है। वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है। वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने की वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने

अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

या 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। हुण वेला हो रहा है प्रोग्राम जिंदगी हसीना दा, ते इस प्रोग्राम दा पहला गीत कर रहे हैं थोड़ी नज़र किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच, गीत दे बोल ने नीले नीले अंबर पर।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल इह ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
5: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसे तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इनफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा।

प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा एक जलंधर केंद्र है। हुन वेला हो रहा है प्रोग्राम सुर सरिता दा, जिदे विच अज दे कलाकार ने भाई मुखविंदर सिंह मोखे ते साथी, इन्हां दी आवाज़ दे विच तुसी सरवन करोगे शब्द गायन। ऐ इन्हां कलाकारां दा पहला प्रसारण है, आओ सरवन करदे हां। होली किनी संत सेव, राग बसंते आधारित शब्द गायन।

0: शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा

संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कवर एनसीडीज, कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेंटल हेल्थ, देन ओरल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर एंड पैलेटिव केयर. सो बेसिकली वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेटिव एंड पैलेटिव हेल्थ केयर. सो दैट इज द मेजर शिफ्ट. द सेकेंड इज, एंड दिस इज फॉर द प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, देन द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कम्स इन, वेयर इन 5 लाख कैशलेस हेल्थ कवर इज प्रोवाइडेड पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर टू द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 12 crore फैमिलीज. अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर रीचिंग आउट टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन, वी ऑल्सो हैव द पीएम जनमन प्रोग्राम. देन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आर रन अक्रॉस द कंट्री इन ट्राइबल एरियाज एंड फॉर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वेयर वी रीच आउट टू दीज पॉपुलेशन टू प्रोवाइड लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. एंड देन ऑल्सो वी हैव प्रोग्राम्स लाइक द फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव एंड द फ्री डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव, वेयर फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स आर प्रोवाइडेड इन फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. एंड ओवर आर्चिंग वी हैव द नेशनल हेल्थ मिशन, विच बेसिक

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च

0: दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आज़ादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आज़ादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन।

0: ऑप्शन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती, और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर

0: के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
4: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
4: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो

0: कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें, जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और पता है ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है।
0: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
0: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं।

0: हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए।
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड या उस तरह की चीजें आपको
0: यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो
0: जो
2: ट्रैवल
0: गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस।
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है। हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिज़ाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्व रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है
3: जी,
4: जी। तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कॉम्पोनेंट हैं

0: कि अगर आप जो सरकारी सेवा हैं उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो
1: जी
0: यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी
0: बिल्कुल
1: कारण से,
0: जी,
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें
0: जी
1: तो?
0: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए,
1: जी
0: हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लिविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग विलंब।

0: तृष्णा एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: दिवस प्रमोद बोरगांवकर।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
0: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल दोस्तों, साढ़े कोल दोस्त नंबर मिला के पहुँच रहे ने, और खास करके व्हाट्सएप ते मैसेज भी साढ़े कोल लगातार पहुँच रहे ने। और साड़ी कोशिश है, मैंने लगता है कि इस तो बाद ठीक जड़ी है लाइन साड़ी जुड़ जाएगी, क्योंकि विच फोन ते मेरी गल हो रही है और कुछ पलां दी दूरी है। उस तो बाद मैंने लगता है राबता थोड़े नाल साड़ा कायम होना शुरू हो जाना है। कृष्णा पाक दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पखा रोड जनकपुरी तो, पिंटू दीवाना रजिंदर सिंह ओबराए उन्होंने सानू याद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इदा ही तुसी कॉल करते रहो। सौगात च गांव फ्रांसिस आर तो राजकुमार दाऊदी, प्रमोद कुमार दाऊदी ते पुष्पेंद्रा कुमार दाऊदी उन्होंने सानू याद किया। कोई भी गीत कहिंदे सानू सुना दिओ। बाजवा कॉलोनी गुरदासपुर प्रीतम चंद अनमोल दीपक गीत कहिंदे ने अपनी पसंद आ जिहड़ा है साडे तक तुसी पहुँचा दिओ। बिल्कुल जी, तुहाडी पसंद, कोशिश करदे हां साडी पसंद बन के तुहाडे तक पहुँचे। सरहिंदी बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता रानी चरना रहेजा, डैनी नीतू ज्योति, और बहुत सारा प्यार जिहड़ा है साडे लई भेजण वाले दोस्त ने जो साडे कोल मैसेज चल के पहुँचे जी। साडे कोल भेजण वाले दोस्त ने, हाँ जी साहब, मैं भी हूँ जय हिंद पंकज फ्रॉम द्वारका दिल्ली तो, कदे सानू भी याद कर लिया करो जी। बिल्कुल, तुहानू तुसी साडे दिलां च वसदे हो। गाने की फरमाइश की है नछत्र गिल की आवाज़ च, कहिंदे ने हसदी ने दिल मंगिया मुंडा जान देन तक जावे। तुसी जान नहीं, साडा प्यार हो, साडा माण हो, क्योंकि इन्नी रात में प्रोग्राम से जुड़ते हो। सो प्रोग्राम से फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर जल्दी मिला लो, 081-2143-1171 नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक पहुँचो। मिलते हैं इस गीत तो बाद।

0: हाँ जी, दोस्त साढ़े कोल पहुँच गए ने अगले आरती, मतलब अगले जिहड़ा घंटा है उहदी शुरुआत कर दित्ती है, क्योंकि ठीक घड़ी दे अनुसार 12 वज चुके ने। 12 तो 1 बजे तक सौगात प्रोग्राम इदां ही तुहाडे नाल चलदा रहेगा, तुहाडा साथ तुहाडे प्यार की लोड़ है। सो दोस्त नंबर मिला के साढ़े कोल पहुँचे ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो हैलो,
1: हेलो, सत
0: हाँ जी, कौन बोल रहे ने?
1: श्री अकाल जी। मनजीत कौर बोल रही हाँ। बस
0: सत श्री अकाल जी मनजीत दी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल
0: होर सुनाओ।
1: लग गई
0: चलो
1: बस।
0: कॉल लगनी है, क्योंकि देखो जी थोड़ी जी साडी जिहड़ी रुकावट आई सी उहदे लई सानू खेद है, पर साडे जिहड़ी टीम है, साडा तुहाडा जिहड़ा खास करके प्यार है, उह सानू खिच के लियांदा है कि जिहड़ी लाइन है उहदी की मजाल है कि फोन ना मिले।
1: असली तो बैठे हैं ना, तो अभी ते गलबात करनी है, गाना सुनना है, साडा सानू भी रिफ्रेश होंदी है साडी
0: बिल्कुल जी
1: गलबात है।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो शनिवार दा दिन असीं मिला के रख्या है, उदण साडी वारी
1: हाँ
0: तुहाडे
1: जी
0: नाल
1: हाँ जी,
0: रूबरू तुहाडे नाल गल करन दी हुंदी है, ते उदण साडा तां चा जिहड़ा है ना सानू चढ़िया हुंदा वी शनिवार दी रात तो लै के संडे
1: हाँ
0: सवेर
1: जी।
0: तक जिहड़ा है तुहाडे नाल साथ साडा इदां ही चलदा रहना है।
1: चाह तो सानू भी बढ़िया है, नाले चाह ला लो, भावे चाह ला लो।
0: चल ठीक है जी, मान लेने हैं। ते अज गीत केड़ा सुनना है?
1: बस पारस भी आए तो उन्होंने पसंद ही चल रही।
0: ठीक है जी, उम्मीद है तुहानू अच्छा
1: वधिया जी,
0: लगेगा,
1: सुना लो। तो
0: साड़ी पसंद तुहानू जरूर भेज रहे हैं। फोन करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इदा ही कॉल करते रहो
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: जी।

लाओ जी दोस्त, उन्होंने मैसेज भेजा जी। पूछन खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लांटी खेड़ा, शालनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, कोई भी गीत सुना दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड मूलणवाल तो मास्टर मनसब अली, नंबरदार चौधरी, अली शेर अहमद, बिलाल उस्मान, तारीख शान, तारीख हसन, तनवीर अते एएस सगू ने सानू याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने वास्ते। अगले दोस्त की गल करिए जी, चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता राणी जिंदल, पप्पू समायल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल, पूरा ही खुशदिल परिवार। कहिंदे ने कोई भी गीत सुना दिओ, असीं तुहाडा गुलाबों के फुलों के नाल बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। बहुत प्यार दे नाल फुलां नाल सजा के, बहुत सारे प्यार दे नाल और मोर पंख दे नाल जिहड़ा मैसेज साडे कोल भेजिआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इदां ही प्यार देंदे रहो। आदरणीय मेजबान नमस्कार, कोई भी गीत सुना दिओ। आदर्श नगम रोड पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव ते साइना,

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे ने?
1: पार पार पार जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: आज ड्राइवर तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा तो।
0: हरियाणे वाले में बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। बहुत
0: जी, हरियाणे का की हाल चाल है?
1: बढ़िया,
0: मीह वाला मौसम बढ़िया होया कि नहीं?
1: बारिश पै रही है जी।
0: बारिश हले भी पै रही है?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: क्या बात है, फिर तो गर्मी तो बहुत राहत मिल गई है जी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी, ते आज की खास सौगात साडे लई लेके आए हो?
1: निमरत खैरा ला दो जी।
0: ठीक है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, शुक्रिया जी।

0: करना सर, गर्मी तो राय तो पूरी मिल गई है,
1: बिल्कुल जी, बहुत
0: गर्मी राय
1: जरूरी है
0: बहुत
1: जी,
0: रही
1: गर्मी
0: सी।
1: बहुत ज़्यादा पै रही सी, अपना बच्चियां दा खास करके ध्यान रखने की लोड़ है। और इन्नी गर्मी दे विच जदों इदा दा मौसम बन जांदा है तो इहदा मज़ा ही कुछ होर है।
0: हाँ जी हाँ जी, सही
1: तो अज फिर
0: कहा
1: गी
0: तुहाडे।
1: गीत कहड़ा सुनना है?
0: गीत है चरणजीत बाबू का, सुना दो जुत्ती नूर वाली पुंगड़ू।
1: ठीक है जी, थोड़ी पसंद थोड़े तक पहुँच रही है जी, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी बाबू।

0: तीन दिन तीन मौतां ते इस वार भी ओही चिट्टी झग ओही सड़े हुए मास दी भयानक बदबू। गौरव जी फिर ओही कहानी है, ओही पैटर्न है, पर इस वार मृतक एक जवान कुड़ी है। ते हां इस बार भी ओही पर्ची मिली है लाश दे नाल, जिस ते सोने दे रंग नाल लिखा होया है कि रोक सको तो रोक लो, नहीं तो एक दिन सब मरणगे। लगता है जिवें कातिल पुलिस नूं धमकी दे रहा है या कोई सुनेहा दे रहा है या फिर हो सकता है चैलेंज कर रहा होवे। फिलहाल पुलिस ने एक केस क्राइम ब्रांच दे एसीपी दलवीर गिल नूं सौंप दिया है।
1: तुहाडी गल सही लगदी है हरप्रीत, की तुहाडी एसीपी दलवीर सिंह दे नाल कोई मुलाकात या गलबात हुई?
0: नहीं गौरव जी, गल तो नहीं हुई। इस वेले भी वो अपनी टीम नाल मौका ही वारदात दा मुआयना कर रहे ने।
1: हरप्रीत की मृतक दे शरीर ते कोई जबरदस्ती दे निशान, कोई मारसट?
0: गौरव जी शरीर दी हालत ऐसी है कि असी कैमरे ते दिखा नहीं सकते, शरीर ते जबरदस्ती या सट दे निशान होणगे भी तां पता करना मुश्किल है। मास ही नहीं बचिया, लगदा जिवें अंदरों ही गल गया होवे। असी इत्थे फोरेंसिक दस्ते दे एक माहिर नाल गल करन दी कोशिश कीती, उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं दसिया, पर उन्होंने मुताबक शरीर की यह हालत किसी कैमिकल रिएक्शन का नतीजा हो सकती है। फिलहाल बॉडी नू कब्जे च लैके लैब च भेज दिता गया।
1: हरप्रीत इस कतल संबंधी नेड़े तेड़े दे लोकां दा की कहना है, पुलिस किस एंगल ते सोच रही है?
0: गौरव जी मॉडल टाउन दे इस पॉश इलाके च इस घटना तो बाद दहशत ते घबराहट का माहौल है। ये एक दुर्घटना है या कैमिकल रिएक्शन है या कुछ होर, ये तो जांच तो बाद ही पता लगेगा। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, CDU TV।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। CDU TV ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ।
2: सर को तो पुलिस में नहीं गजल सिंगर होना चाहिए था सर।
3: वाह भाई वाह, जगजीत सिंह का कोई जवाब ही नहीं। जदों मैं सुनो इदा लगता जिदा मेरा दिल ही गा रहा है। अच्छा बराड़ एक गल दस, कदे इश्क उश्क कीता?
4: जनाब
3: तू तो रहन दे, तू तो बई रैसलिंग दे विच गोल्ड मैडलिस्ट है, गजल इश्क ते पहलवानी कोई कनैक्शन नहीं? ते ए है साडी दिल्ली वाली आरती वर्मा, जिन्हों अरिजीत सिंह दे गाने तो सिवा कुछ पसंद ही नहीं।
2: वर्मा नहीं सर, भारती शर्मा।
3: शर्मा ते वर्मा कोई ज्यादा फर्क तो नहीं मैडम जी, मैं कड़ा तुहानू आरती अख्तर कहता। अख्तर अख्तर बेगम अख्तर।
5: ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना।
3: ओह ओह, तो किसी ने सुने बेगम अख्तर का ना सुने?
4: अजकल तो सतिंदर सुनी रहा जनाब। पर मैं कहता सी।
3: कहो जी प्लीज उचरो, की कहना चाहते हो?
4: सर कुछ तो गड़बड़ है, ए तीजा मर्डर केस है इको पैटर्न ते।
3: ओके बैक टू केस। हाँ जी शर्मा जी, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई?
2: जी सर। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आई मीन एक कोइंसिडेंस नहीं है मतलब मर्डर ही है, ते आम नहीं है, दो चीज़ां कॉमन ने।

0: जनाब यही हो जगह सिटी पॉइंट कैफे।
1: सारे एग्जिट पॉइंट कवर कर दियो, कोई भी अंदरों बाहर या बाहरों अंदर नहीं जाएगा। ओके
0: ओके सर ओके। कौन है भाई, कौन है थे?
2: अब ब्रेकफास्ट 8 बजे तो पहले नहीं मिलेगा जी, लिख के लाया।
0: वह आके दस कितने लिखिया?
2: ओ साहब जी, बड़े साहब जी, साढ़े छोटे जे ढाबे थे।
0: तेरा है कैफे?
2: हाँ जी।
1: नाम की तरह?

0: की है साहब जी, कोई गड़बड़ होगी?
1: नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, बड़ी भारी गड़बड़ होगी काका। तीन लोग इतों की चाह पी के गए, हमेशा लिए अखा बंद कर गए, वापस ही नहीं आए। असी सोचा कि चल के देखिए तो सही कि साढ़े शहर च सीधी सुरग की टिकट कट्टन वाला ये ट्रैवल एजेंट कौन है, तुम तो पता ही नहीं।
2: अखबार नहीं पढ़ता भाई?
0: पढ़ता सर।
2: तो तू पढ़िया ही होएगा कि अपने शहर में पिछलियाँ तीन रातों में तीन लाशा मिलिया ने।
0: तीन मर्डर की गल कर रहे हो जी?
2: उन्हां दी गल कर रहे हैं, उन्हां दी जेब विच तेरे कैफे दे बिल मिले ने। ऐ तेरा ही है ना?
0: हाँ जी, ये तो मेरे कैफे दे बिल है।
2: जिन्हां तिन्हां दीयां लाशां मिलियां ने उन्होंने मौत तो पहला तेरे कैफे विच खादा पीता है। तैनू नहीं लगता ये एक अजीब जिहा इतफाक है?
0: सर जी सौन लगे मैनू, इत्थों कुछ भी गलत नहीं है। तुसी चाहो तो चेक कर सकते हो जनाब।
2: उही तो करन आए हैं, तू बैठ इत्थे, अंदर जो स्टाफ है उन्होंने भी इत्थे बुला ला।
0: अकरम बेटे, ओ जा सब नू बाहर बुला लै।
2: तरवीर जरा चंगी तरह तलाशी ला, बंदिया नू बोल दे कोई खूंजा छुट्टना नहीं चाहिए।
3: जी जनाब।
1: अपनिया बिल बुक्स लैके आओ सर।
0: हुणे लो जी।
1: लो
0: आ लो सर।
1: नवी बिल बुक है?
0: जी साहब।
1: ये तो 09 सीरीज है, डेड बॉडीज तो 01 सीरीज दे बिल मिले।
0: 01 जी, ध्यान ही नहीं दिता साहब जी। 01 सीरीज तो पिछले साल सितंबर की बिल बुक है, जदों मैं ये कैफे खोलिया सी। मेरे पुराने बिल की रसीद मरण वाले की जेब में किवें पहुंची? साहब जी, मेरा स्टाफ ये सब इतने काम करते हैं जी।
1: ओके अदराओ भाई, लाइन से लग जाओ। ये सब इतने काम करते कदों तो?
0: ये चारे शुरू तो ही इतने हैं जी, पिछले साल सितंबर तो।
1: सारे शुरू तो ही पक्के ने? कोई नवा मुंडा नहीं रखा?
0: एक महीना होया, एक मुंडा आया है अमरजीत, पर अज पिंड चलिया गया है।
2: मतलब?
0: कल कहिंदा सी मां बीमार है, पिंड जावांगा। रात नूं कुछ पैसे भी ले मैथों, ते अज 9:30 बजे दी ट्रेन नाल अजमेर निकल गया।
1: फोटो है उहदी कोई?
0: जी है, उसका आई कार्ड है। अकरम, उसका आई कार्ड दिखा दे।
1: बराड़े मुंडा हथों नहीं निकलना चाहिए।
2: ओके सर, ओके, नहीं निकलेगा।
1: कैफे सील कर दो, रसीदा, कैमरा फुटेज, कूड़ा, अलमारियां, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किसी नू दसन दी कोई लोड़ नहीं। फाइन
0: साहब जी, सील ना करो। साहब जी, मैं कुछ नहीं कीता जी।
1: ओके, इदा करते हैं, बार अंडर रेनोवेशन दी फट्टी टंग देने। ये तू कुछ नहीं कीता तो टेंशन दी कोई लोड़ नहीं, तेन कुछ नहीं होने लगा, ठीक है?
0: नहीं साहब जी, मैं कुछ नहीं कीता जी।
1: नाम की है?
3: जी अमरजीत जनाब।
1: उमर
3: 22 साल।
1: कैफे च की करदा सी तू?
3: हेल्पर हाँ जी साहब। सफाई, भांडे, जो किया जांदा सी ओही करदा सी।
1: ते जो कम रात नूं करदा सी कैफे बंद होण तो बाद, ओह कदे कहां ते करदा सी? अलविंदर,
4: तुसी आराम करो जनाब, मैं देख रहा हूँ। 5 मिनट च तोते वांगू बोलूगे तां
2: चल मित्रा, तैनूं नचना सिखाउणा। ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜੁੰਬਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ?
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈਲਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
1: ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਰ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ?
3: ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਨਾਬ,

0: आरती, आरती एक एड्रेस भेज रहे हैं। इस पते थे जो भी 45 साल के आसपास का बंदा मिले उन्हें चुक लिया।
1: ओके सर।
0: गोरा रंग है, खब्बे अख के थले कट का निशान है, दो तीन बार लगातार अखा चमकता है। तो नाम है राजीव शर्मा।
1: सर, ये आई मीन ये है कौन?
0: एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।

0: कौन?
1: एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।
0: ओके सर।
2: सर मे आई कम इन?
1: ओ ओ ओ आरती, आ जाओ बैठो। अच्छा, उस एड्रेस से कोई मिले?
2: नहीं सर, कोई नहीं मिला।
1: थैंक गॉड।
2: पर सर, मकान मालिक ने क्या है कि वो साइंटिस्ट राजीव शर्मा उतो चला गया सी। मैनू कमरे च कुछ नहीं मिला, पर उथे एक वड्डा डब्बा रखा होया सी। ते हैरानी दी गल ए है कि उस ते थोड़ा नाम लिखा सी, वो मैं लेके आई हाँ। सर तुसी उन्हों जानते सी?
1: डब्बा रख दो इत्थे, यू कैन लीव नाउ। ये की है? ये तो कोई रिसर्च पेपर है। प्रोजेक्ट सफेद लड्डू, हाउ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉल्यूशन पॉइजन। हाउ टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉल्यूशन पॉइजन। राजीव राजीव राजीव, मेरे नाँ की चिट्ठी, मेरे दोस्त, मेरे भरा, मेरा गोद लिया पिता। मैं यकीन सी कि तू मेरे तक पहुँच ही जाएगा। सो मैनू उतों निकलना पाया। 15 साल पहला तो अपने राह से निकल गया सी, तो मैं उत्थे रह गया अपनी जिद नाल, अपने पागलपन नाल। जिन्हां तिन्हां लोगों की मौत की बुझारत नूं बुझण की तू कोशिश करता पाया है, वह धोखेबाज से, मनुखता के दुश्मन से, इसलिए मैनू उन्हां नूं मारना पाया। हाँ, मैं पैसे कमाउण लई ड्रग वेचिया, पर मैं ड्रग उन्हां नूं वेचता सी जो निकम्मे ते फिजूल लोग से, समाज ते बोझ से, मेरे एक्सपैरिमेंट लई जेन्युइन पिग से। ड्रग दे पैसे नूं मैं कदे अपने लिए नहीं वरत्या, सिर्फ अपनी रिसर्च ते लाया। जो 3 मरे ने ये उही लोग ने जिन्हां ने पहला मेरी रिसर्च विच रुचि दिखाई। जदों मेरा एक्सपैरिमेंट सफल हो गया तो उन्होंने पता लग गया कि एनवायरमेंट च छुपे हुए कैमिकल्स डर्टी डजन एक दिन साड़ी जान लै सकते हैं साइनाइड कैप्सूल वांगू, तो उन्हां दी रुचि ते लालच वध गया। वो एंटीडोट बनाउण दे काम विच मेरी मदद करन लग गया। पर जो मैं एंटीडोट दे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिए तैयार हो गया, उन्होंने योजना बनाई कि वह पावर स्ट्रक्चर चुरा के एक विदेशी कंपनी को बेच देन, तो मैं कदे भी नहीं सी होन देना। मजबूरी च मैनू उन्होंने मारना ही पाया। साढ़े सारा कुछ, 3DLC567YH की मोटरसाइकिल की चाबी वापस कर रहा, वो पार्किंग से खड़ा है, 567 नंबर वाली 5 कारां भी उत्थे खड़िया ने, सिर्फ तैनू देख के जा रहा। मैनू कैंसर है, फाइनल स्टेज, कोई चांस नहीं, कदे भी बाय बाय हो सकता है, जा रहा बहुत दूर। तू फिकर न कर, हुण होर कोई नहीं मरेगा।
3: सुख विच दुख विच छां विच धुप विच साथ नहीं छड्डांगे यार, साथ नहीं छड्डांगे।
1: काश तू साथ ना छड्डे।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों उचारित है। पंचम गुरदेव अकाल पुरख के चरणों विच बेनती करते ने कि हे दातार प्रभु मैनू अपने नाम की दात बख्शो, मेरे ते किरपा करो कि मैनू आप जी का नाम कदे ना विसरे। मेरे मन विच यही उमंग है, यही चाह है कि मैं आप जी दे गुण गायन करदा रवां। बेशक प्रभु दे गुण बयान नहीं कीते जा सकते, उस दे गुण गायन भी नहीं कीते जा सकते, पर अकाल पुरख जेकर आप किरपा करे तां ये संभव हो सकता है। क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई ए जियो पिंड सब थारे। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बैखरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु प्यारे जन गुरमुख जन उस परवरदिगार दी भगती विच लीन रहिंदे हन, सदा उस दी उस्तत करदे रहिंदे हन, ओ खुद उस्तत अते निंदा तों उपर हुंदे ने। ते जे कोई ऐसे भले पुरशां दी निंदिया भी करदा है तां भी ओ अपना गुण गायन करन वाला सुभा त्याग दे नहीं। हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावै। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां वल्लों गाया होया ये शब्द।

0: राम नाम गुन गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुन न गवावे। इस शब्द का गायन किया सी डॉक्टर गुरनाम सिंह होरा ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी।

सत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूरब करम लिखे गुण गाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई दर्शन सिंह कोमल ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

पंच पूत एक कार राख ले समाज जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सार राथ उन मन लिव राख निरंकार।

0: सदा कल्लिव रहे करण स्यों इच्छाचारे द्रोम सपूर जो निवे खवे कस बिमल बिचारे एह दत्त जानियो सर्वगत लख बिडाने सहज पाए संचो किरण अमृत कलवाने गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रह जलयो हर परसो कल समुलवे जन दर्शन लहने पयो हर परसो कल समुलवे जन दर्शन लहने पयो।
1: मन विसास पायो गहर गोदर दियो घर नास्ता नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चेत दारिद हरण पिखंते कल मल तसन सद रंग सहज का लुचर जस जंपो लहने रसन सद रंग सहज का लुचर जस जंपो लहने रसन।
2: नामे ओख नामे दा

0: सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पाओ साच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु के साजना परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परसे गुरु के साजना परवान
1: अमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविय एहनिस सहज सुपाए दर्शन।

निजा नाम निशान सतगुरु शब्द सुवारे हो पाप जल सायर सेत नाम हरि का बहुता तो सतगुरु संगहित नाम लाग जाग उदरे हो जगत उदार नाम सतगुर तुठे पायो अब ना है अवर सर काम वारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक आयो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर रामेंदियो गुर रामदास दर्शन परस

शिव मुन गहे न तो जात का भला सिखो, जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख की ये

सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तव

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार।

पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर

हजूर कराह प्रसादी देख हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बगसो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे।

0: शीश नवाए क्या थी जाए जर देख सुते जाहे।
1: भला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं।